असंख मूर्ख अंधकोर, असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाहे जोर, असंख गड़बड़ हत्या कमाहे, असंख पापी पाप कर जाहे, असंख कूड़ियार कूड़े फिराहे, असंख मलेश मल पख खाहे, असंख निंदक से

तीर्थ तप दया दत्त दान जे को पावै तिलका मान सुनया मन्या मन कीता पाओ अंतरगत तीर्थ मल नाओ सब गुण तेरे मैं नाही कोए बिन गुण कीते भगत न होए स्वस्थ आथ बाणी बरमाओ सत सुहाण सदा मन चाओ कवन सवेला वक्त कवन कवन थित कवन वार कवन सिर उत्ती माहो कवन जिथो आकार वेल न पाइया पंडती जे होवै लेख पुराण वक्त न पायो कद

आखह पड़े करह बखियाण। आखह बरमे आखह इंद आखह गोपी तय गोबिंद आखह ईश्वर आखह सिद्ध आखह केते कीते बुद्ध।

गावै तुहनो पौन पणी बैसंतर, गावै राजा धर्म दुआरे, गावै चित गुप्त लिख जान है, लिख लिख धर्म विचारे, गावै ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन सला सुवारे, गावै इंद इंदासन बैठे देव त्या दर नाले, गावह सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारे, गावन जति सती संतोखी गावह वीर करारे, गावन पंडित पढ़न रखी सर जुग जुग वेदा नाले, गावह मोहनिया मन मोहन सुरगा मच पयाले, गावन रत्नो पाए तेरे अड़सठ तीर्थ नाले, गावह जोध महाबल सूरा गावह खाणी चारे, गावह खंड मंडल वर भंडा कर कर रखे तारे, से तुदनो गावह जो तुद पावन रते तेरे भगत रसाले, होर केते गावन से मैं चित न आवन नानक क्या बिचारे, सोई सोई सदा सच साहेब साचा साची नाई है, पी होसी जाए न जासी रचना जिन रचाई, रंगी रंगी भांति कर कर जिनसी माया जिन उपाई, कर कर वेखै कीता अपना जिवत सदी वडियाई, ज्योतिष पावै सोई करसी हुक्म न करना जाई, सो पातशाह साहा पात साहिब नानक रहन रजाई, मुंदा संतोख सरम पत झोली ध्यान की करह विभूत, खिंथा काल कुआरी काया जुगत डंडा प्रतीत, आई पंथी सगल जमाती मन जीतै जग जीत, आदेश तिसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस, भुगत ज्ञान दया भंडारण घट घट वाजह नाद, आप नाथ नाथी सब जां की रिद सिद्ध अवरा साद, संजोग वियोग दोयकार चलावह लेखे आवह भाग, आदेश तिसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस, एका माई जुगत व्याई तिन चेले परवान, एक संसारी एक भंडारी एक लाए दीवान, जिव तिस पावै तिवै चलावै जिव होवै फरमान, ओह वेखै

भाग हुआ गुरसंत मिलाया, प्रभ अविनाशी कर मह पाया, सेव करी पल चसा न विछड़ा, जन नानक दास तुम्हारे जियो, हौ कोली जियो कोल कुमाई, जन नानक दास तुम्हारे जियो रहाओ। तनासरी महला पहला, घर पहला चौप दे इको ओंकार, सतनाम करता पुरख निरभौ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सहभंग गुर प्रसाद जियो।

पहला यानड़िए मानड़ा काय करे हैं, अपनड़ कर हर रंगो की ना माने हैं, सौ नेड़ तन कमलिए बाहर क्या ढूंढे हैं, पैकियां देह सलाई।

अगम गोचर अलख पारा चिंता करो हमारी जल थल महील भरपुर लीना घट घट जोत तुम्हारी सिख मत सब बुद्ध तुम्हारी मंदर छावा तेरे तुझ बिन अवर न जाना मेरे साहिबा गुण गावा नित तेरे।

ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਾਪ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਛਪੈ ਸ਼ੰਤ ਪ੍ਰਸਾਦ ਚਕਰ ਚਿਹਨ ਅਰ ਵਰਨ ਜਾਤ ਅਰ ਪਾਤ ਨਹਿਨ ਜਿਹੇ ਰੂਪ ਰੰਗ ਅਰ ਰੇਖ ਭੇਖ ਕੋ ਕਹਿ ਨ ਸਕਤ ਕਿਹੇ ਅਚਲ ਮੂਰਤ ਅਨ ਭਉ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮ ਤੋਜ ਕਿਹ ਜੈ ਕੋਟ ਇੰਦਰ ਇੰਦਰਾਣ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਾਣ ਗਿਣ ਜੈ ਤ੍ਰਿਪਵਣ ਮਹੀਪ ਸੁਰ ਨਰ ਅਸੁਰ ਨੇਤ ਨੇਤ ਬੰਤ੍ਰਿਣ ਕਹਿਤ ਤਵ ਸਰਬ ਨਾਮ ਕਥੈ ਕਵਨ ਕਰਮ ਨਾਮ ਵਰਣਤ ਸੁਮਤ ਭੁਜੰਗ ਪ੍ਰਿਆਤ ਛੰਦ ਨਮਸਤੰ ਅਕਾਲੇ ਨਮਸਤੰ ਕਿਰਪਾਲੇ ਨਮਸਤੰ ਅਰੂਪੇ ਨਮਸਤੰ ਅਨੂਪੇ ਨਮਸਤੰ ਭੇਖੇ ਨਮਸਤੰ ਲੇਖੇ ਨਮਸਤੰ ਅਕਾਏ ਨਮਸਤੰ ਅਜਾਏ ਨਮਸਤੰ ਗੰਜੇ ਨਮਸਤੰ ਪੰਜੇ ਨਮਸਤੰ ਨਾਮੇ ਨਮਸਤੰ ਠਾਮੇ ਨਮਸਤੰ ਕਰਮੰ ਨਮਸਤੰ ਧਰਮੰ ਨਮਸਤੰ ਨਾਮੰ ਨਮਸਤੰ ਧਾਮੰ ਨਮਸਤੰ ਜੀਤੇ ਨਮਸਤੰ ਪੀਤੇ ਨਮਸਤੰ ਬਾਹੇ ਨਮਸਤੰ ਢਾਹੇ ਨਮਸਤੰ ਨੀਲੇ ਨਮਸਤੰ ਨਾਦੇ ਨਮਸਤੰ ਛੇਦੇ ਨਮਸਤੰ ਗਾਦੇ ਨਮਸਤੰ ਗੰਜੇ ਨਮਸਤੰ ਪੰਜੇ ਨਮਸਤੰ ਉਦਾਰੇ ਨਮਸਤੰ ਪਾਰੇ ਨਮਸਤੰ ਸੋਏ ਕੈ ਨਮਸਤੰ ਨੇਕੈ ਨਮਸਤੰ ਭੂਤੇ ਨਮਸਤੰ ਅਜੂਪੇ ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਕਰਮੇ ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਭਰਮੇ ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਦੇਸੇ ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਭੇਸੇ ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਨਾਮੇ ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਕਾਮੇ ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਧਾਤੇ ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਘਾਤੇ ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਧੂਤੇ ਨਮਸਤੰ ਭੂਤੇ ਨਮਸਤੰ ਲੋਕੇ ਨਮਸਤੰ ਅਸੋਕੇ ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਤਾਪੇ ਨਮਸਤੰ ਥਾਪੇ ਨਮਸਤੰ ਤ੍ਰਮਾਨੇ ਨਮਸਤੰ ਨਿਧਾਨੇ ਨਮਸਤੰ ਅਗਾਹੇ ਨਮਸਤੰ ਅਬਾਹੇ ਨਮਸਤੰ ਤ੍ਰਿਵਰਗੇ ਨਮਸਤੰ ਸਰਗੇ ਨਮਸਤੰ ਪ੍ਰਭੋਗੇ ਨਮਸਤੰ ਸੁਜੋਗੇ ਨਮਸਤੰ ਅਰੰਗੇ ਨਮਸਤੰ ਭੰਗੇ ਨਮਸਤੰ ਅਗਮੇ ਨਮਸਤ ਸਤ ਰਮੇ ਨਮਸਤੰ ਜਲਾਸਰੇ ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਾਸਰੇ ਨਮਸਤੰ ਅਜਾਤੇ ਨਮਸਤੰ ਅਪਾਤੇ ਨਮਸਤੰ ਅਮਜਬੇ ਨਮਸਤ ਸਤ ਅਜਬੇ ਅਦੇਸੰ ਅਦੇਸੇ ਨਮਸਤੰ ਅਭੇਸੇ ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਧਾਮੇ ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਭਾਮੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਕਾਲੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਦਿਆਲੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਰੂਪੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਭੂਪੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਖਾਪੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਥਾਪੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਕਾਲੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਪਾਲੇ ਨਮਸਤ ਸਤ ਦੇਵੈ ਨਮਸਤੰ ਭੇਵੈ ਨਮਸਤੰ ਜਨਮੇ ਨਮਸਤੰ ਸੁਬਨਮੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਗਾਉਣੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਭਾਉਣੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਰੰਗੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਭੰਗੇ ਨਮੋ ਕਾਲ ਕਾਲੇ ਨਮਸਤ ਸਤ ਦਿਆਲੇ ਨਮਸਤੰ ਅਵਰਨੇ ਨਮਸਤੰ ਅਮਰਨੇ ਨਮਸਤੰ ਜਰਾਰੰਗ ਨਮਸਤੰ ਕਿਰਤਾਰੰਗ ਨਮੋ ਸਰਬ ਧੰਦੇ ਨਮੋ ਸਤ ਅਬੰਧੇ ਨਮਸਤੰ ਨਰਸਾਕੇ ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਬਾਕੇ ਨਮਸਤੰ ਰਹੀਮੇ ਨਮਸਤੰ ਕਰੀਮੇ ਨਮਸਤੰ ਅਨੰਤੇ ਨਮਸਤੰ ਮਹੰਤੇ ਨਮਸਤ ਸਤ ਰਾਗੇ ਨਮਸਤੰ ਸੁਹਾਗੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਸੋਖੰ ਨਮੋ ਸਰਬ ਪੋਖੰ ਨਮੋ ਸਰਬ ਕਰਤਾ ਨਮੋ ਸਰਬ ਹਰਤਾ ਨਮੋ ਜੋਗ ਜੋਗੇ ਨਮੋ ਭੋਗ ਭੋਗੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਦਿਆਲੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਪਾਲੇ ਚਾਚਰੀ ਸ਼ੰਤ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਰੂਪ ਹੈ ਅਨੂਪ ਹੈ ਅਜੂ ਹੈ ਅਭੂ ਹੈ ਅਲੇਖ ਹੈ ਅਭੇਖ ਹੈ ਅਨਾਮ ਹੈ ਅਕਾਮ ਹੈ ਅਤੇ ਹੈ ਅਭੇ ਹੈ ਅਜੀਤ ਹੈ ਅਭੀਤ ਹੈ ਤ੍ਰਮਾਨ ਹੈ ਨਿਧਾਨ ਹੈ ਤ੍ਰਿਵਰਗ ਹੈ ਅਸਰਗ ਹੈ ਅਨੀਲ ਹੈ ਅਨਾਦ ਹੈ ਅਜੇ ਹੈ ਅਜਾਦ ਹੈ ਅਜਨਮ ਹੈ ਅਵਰਨ ਹੈ ਅਭੂਤ ਹੈ ਅਪਰਨ ਹੈ ਅਗੰਜ ਹੈ ਅਭੰਜ ਹੈ ਅਜੂਜ ਹੈ ਅਜੰਜ ਹੈ ਅਮੀਖ ਹੈ ਰਫੀਕ ਹੈ ਅਤੰਧ ਹੈ ਅਬੰਧ ਹੈ ਨਿਰਬੂਝ ਹੈ ਅਸੂਝ ਹੈ ਅਕਾਲ ਹੈ ਅਜਾਲ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਹੈ ਅਜਾਹ ਹੈ ਅਨੰਤ ਹੈ ਮਹੰਤ ਹੈ ਅਲੀਕ ਹੈ ਨਿਰਸਰੀਕ ਹੈ ਨਿਰਲੰਭ ਹੈ ਅਸੰਭ ਹੈ ਅਗੰਮ ਹੈ ਅਜੰਮ ਹੈ ਅਭੂਤ ਹੈ ਅਛੂਤ ਹੈ ਅਲੋਕ ਹੈ ਅਸੋਕ ਹੈ ਅਕਰਮ ਹੈ ਅਭਰਮ ਹੈ ਅਜੀਤ ਹੈ ਅਭੀਤ ਹੈ ਅਬਾਹ ਹੈ ਅਗਾਹ ਹੈ ਅਮਾਨ ਹੈ ਨਿਧਾਨ ਹੈ ਅਨੇਕ ਹੈ ਫਿਰ ਏਕ ਹੈ ਭੁਜੰਗ ਪ੍ਰਜਾਤ ਛੰਦ ਨਮੋ ਸਰਬ ਮਾਨੇ ਸਮਸਤੀ ਨਿਧਾਨੇ ਨਮੋ ਦੇਵ ਦੇਵੇ ਅਭੇਖੀ ਅਭੇਵੇ ਨਮੋ ਕਾਲ ਕਾਲੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਪਾਲੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਗਾਉਣੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਭਾਉਣੇ ਅਨੰਗੀ ਅਨਾਥੇ ਨਰਸੰਗੀ ਪਰਮਾਥੇ ਨਮੋ ਭਾਨ ਭਾਨੇ ਨਮੋ ਮਾਨ ਮਾਨੇ ਨਮੋ ਚੰਦਰ ਚੰਦਰੇ ਨਮੋ ਭਾਨ ਭਾਨੇ ਨਮੋ ਗੀਤ ਗੀਤੇ ਨਮੋ ਤਾਨ ਤਾਨੇ ਨਮੋ ਨਿਰਤ ਨਿਰਤੇ ਨਮੋ ਨਾਦ ਨਾਦੇ ਨਮੋ ਪਾਨ ਪਾਨੇ ਨਮੋ ਬਾਦ ਬਾਦੇ ਅਨੰਗੀ ਅਨਾਮੇ ਸਮਸਤੀ ਸਰੂਪੇ ਪ੍ਰਭੰਗੀ ਪ੍ਰਮਾਥੇ ਸਮਸਤੀ ਵਿਭੂਤੇ ਕਲੰਕੰ ਬਿਨਾ ਨੇ ਕਲੰਕੀ ਸਰੂਪੇ ਨਮੋ ਰਾਜ ਰਾਜੇਸ਼ਰਮ ਪਰਮ ਰੂਪੇ ਨਮੋ ਜੋਗ ਜੋਗੇ ਸ਼ਰਮ ਪਰਮ ਸਿੱਧੇ ਨਮੋ ਰਾਜ ਰਾਜੇਸ਼ਰਮ ਪਰਮ ਬ੍ਰਿਧੇ ਨਮੋ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਪਾਣੇ ਨਮੋ ਅਸਤ੍ਰ ਮਾਣੇ ਨਮੋ ਪਰਮ ਗਿਆਤਾ ਨਮੋ ਲੋਕ ਮਾਤਾ ਭੇਖੀ ਅਭਰਮੀ ਅਭੋਗੀ ਅਭੁਗਤੇ ਨਮੋ ਜੋਗ ਜੋਗੇ ਸ਼ਰਮ ਪਰਮ ਜੁਗਤੇ ਨਮੋ ਨਿਤ ਨਾਰਾਇਣੇ ਕਰੂਰ ਕਰਮੇ ਨਮੋ ਪ੍ਰੇਤ ਅਪ੍ਰੇਤ ਦੇਵੇ ਸੁਧਰਮੇ ਨਮੋ ਰੋਗ ਹਰਤਾ ਨਮੋ ਰਾਗ ਰੂਪੇ ਨਮੋ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹੰ ਨਮੋ ਭੂਪ ਭੂਪੇ
नमो दान दाने नमो मान माने नमो रोग रोगे नमस्तंग स्नाने नमो मंत्र मंत्रं नमो यंत्र यंत्रं नमो इष्ट इष्टे नमो तंत्र तंत्रं सदा सचिदानंद सर्वं प्रणासी अनूपे रूपे समस्तुल निवासी सदा सिद्ध दा बुद्ध दा बृद करता अदो उर्द अर्दं अगं ओग हरता परं परम परमेश्वरं प्रोष पालं सदा सर्वदा सिद्धाता दयालं अशेदी अभेदी अनामं अकामं समस्तो पराजी समस्त सत्तामं तेरा जोर चाचरी छंद जले हैं थले हैं अपीत हैं अपे हैं प्रभु हैं अजू हैं अदेश हैं अपेश हैं भुजंग प्रयात छंद अगाधे अबाधे आनंदी स्वरूपे नमो सर्व माने समस्ति निधाने नमस्तं निरनाथे नमस्तं प्रमाथे नमस्तं अगंजे नमस्तं अपंजे नमस्तं अकाले नमस्तं अपाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वपेशे नमो राज राजे नमो साज साजे नमो शाह शाहे नमो माह माहे नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोख रोखे नमो सोख सोखे नमो सर्व रोगे नमो सर्व भोगे नमो सर्व जीतं नमो सर्व पीतं नमो सर्व ज्ञानं नमो परमतानं नमो सर्व मंत्रं नमो सर्व यंत्रं नमो सर्व दृश्यं नमो सर्व कृष्ण नमो सर्व रंगे त्रिपंगी अनंगे नमो जीव जीवं नमो बीज बीजे अखिजे अपिजे समस्तं प्रसिजे कृपालं स्वरूपे कुकर्मं प्रणासी सदा सर्वदा हृदय सिदं निवासी चरपट शांत प्रसाद अमृत कर्मे अमृत धर्मे अखल जोगे अचल भोगे अचल राजे अटल साजे अखल धर्मं अलख कर्मं सर्वं दाता सर्वं ज्ञाता सर्वं पाने सर्वं माने सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं भुगता सर्वं युगता सर्वं देवं सर्वं देवं सर्वं काले सर्वं पाले रुआल शांत प्रसाद आद रूप अनाद मूर्त जोन पुरख अपार सर्व मान त्रिमान देव पेवाद उदार सर्व पालक सर्व कालक सर्व कोपन काल जतर ततर विराज ही अवतूत रूप रसाल नाम ठाम ना जात जाकर रूप रंग ना रेख आद पुरख उदार मूर्त जोन आद असेख देश और ना पेस जाकर रूप रेख ना राग जतर ततर दिशा विसा होय फैल्यो अनुराग नाम काम विहीन पेखत ताम हूं नह जाहे सर्व मान सर्वत्र मान सदैव मान तताहे एक मूर्त अनेक दर्शन कीन रूप अनेक खेल खेल अखेल खेलन अंत को फिर एक देव भेव न जान ही जेह वेद और कतेव रूप रंग न जात पात सो जानई केह जेव तात मात न जात जाकर जन्म मरण विहीन चक्र बकर फिर चतर चक मान ही पुरतीन लोक चौदह के विखय जग जाप ही जेह जाप आदेव अनाद मूर्त थाप्यो सबै जेह थाप परम रूप पनीत मूर्त पूर्ण पुरख अपार सर्व विश्व रचो सुजंभव गढ़न भंजन हार कालहीन कला संयुक्त काल पुरख आदेश धर्म धाम सो भरम रहत भूत अलख भेस अंगरागना रंग जा कह जात पातना नाम गर्भ गंजन दुष्ट भंजन मुक्त दायक काम आप रूप मीक अनुस्तत एक पुरख अवतूत गर्भ गंजन सर्व भंजन आद रूप असूत अंगहीन अपंग अनात्म एक पुरख अपार सर्व लायक सर्व कायक सर्व को प्रतिपार सर्वगंता सर्वहंता सर्वते अनपेख सर्वशास्त्र ना जान ही जेह रूप रंग अर रेख परम वेद पुराण जा कह नेत पाखत नित कोट सिमरत प्राण शास्त्र ना आवई बहुचित मधुपार शंत प्रसाद गुण गण उदार महिमा पार आसन अपंग उपमान अंग अनुभव प्रकाश निस दिन अनास आजान बाहो शाहान शाहो राजान राजपानान पान देवान देव उपमा महान इंद्रान इंद्र बालान बाल रंकान रंक कालान काल अनपूत अंग अबा अपंग गतमित अपार गुण गण उदार मुन गण प्रणाम निरपय निरकाम अत दुत प्रचंड मित गत अखंड आलिश्य कर्म अदृश्य धर्म सर्वा परणाड्य अंडंड बाड्य चाचरी शंता प्रसाद गोविंदे मकंदे उदारे अपारे हरियं करियं निरनामे अकामे भुजंग प्रयात छंद चतर चक्र करता चतर चक्र हरता चतर चक्र दाने चतर चक्र जाने चतर चक्र वर्ती चतर चक्र भरती चतर चक्र पाले चतर चक्र काले चतर चक्र पासे चतर चक्र वासे चतर चक्र मान्य चतर चक्र दान्य चाचरी छंद न सत्र न मित्र न परमंग न पितर न कर्मंग न काय अजन्मंग अजाय न चित्र न मित्र परे है पवित्र पृथ्वी सै दिशय दृश्य कृष्य
ਭਗਵਤੀ ਛੰਦ ਤਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਥ ਤੇ ਕਿਆ ਛਿਜ ਦੇਸੈ ਕਿਆ ਭਿਜ ਭੇਸੈ ਕਿਆ ਗੰਜ ਕਰਮੈ ਕਿਆ ਭੰਜ ਭਰਮੈ ਕਿਆ ਭਿਜ ਲੋਕੈ ਕਿਆ ਦਿੱਤ ਸੋਕੈ ਕਿਆ ਅਵਧੂਤ ਵਰਨੈ ਕਿ ਵਿਭੂਤ ਕਰਨੈ ਕਿ ਰਾਜੰਗ ਪ੍ਰਭਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮੰਗ ਤੁਜਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਨੈ ਕਿ ਸਰਬਾ ਭਰਨੈ ਕਿ ਜਗਤੰਗ ਕ੍ਰਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਤਰੰਗ ਛਤਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮੰਗ ਸਰੂਪੈ ਕਿ ਅਨੁਭਵ ਅਨੁਪੈ ਕਿ ਆਦ ਅਦੇਵ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਅਭੇਵ ਹੈ ਕਿ ਚਿਤਰੰਗ ਬਹੀਨੈ ਕੇ ਕੈ ਅਧੀਨੈ ਕਿ ਰੋਜੀ ਰਜਾ ਕੈ ਰਹੀਮੈ ਰਿਹਾ ਕੈ ਕਿ ਪਾਕ ਬੇਐਬ ਹੈ ਕਿ ਗੈਬਲ ਗੈਬ ਹੈ ਕਿ ਅਫਵਲ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਹਾਨ ਸ਼ਾਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਨ ਕੁਨਿੰਦ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜੀ ਦਹਿੰਦ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਕ ਰਹੀਮ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮੰਗ ਕਰੀਮ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬੰਗ ਕਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬੰਗ ਦਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬੱਤਰ ਮਾਨੈ ਕਿ ਸਰਬੱਤਰ ਦਾਨੈ ਕਿ ਸਰਬੱਤਰ ਗਾਉਣੈ ਕਿ ਸਰਬੱਤਰ ਭਾਉਣੈ ਕਿ ਸਰਬੱਤਰ ਦੇਸੈ ਕਿ ਸਰਬੱਤਰ ਭੇਸੈ ਕਿ ਸਰਬੱਤਰ ਰਾਜੈ ਕਿ ਸਰਬੱਤਰ ਸਾਜੈ ਕਿ ਸਰਬੱਤਰ ਦੀਨੈ ਕਿ ਸਰਬੱਤਰ ਲੀਨੈ ਕਿ ਸਰਬੱਤਰ ਜਾਹੋ ਕਿ ਸਰਬੱਤਰ ਭਾਹੋ ਕਿ ਸਰਬੱਤਰ ਦੇਸੈ ਕਿ ਸਰਬੱਤਰ ਭੇਸੈ ਕਿ ਸਰਬੱਤਰ ਕਾਲੈ ਕਿ ਸਰਬੱਤਰ ਪਾਲੈ ਕਿ ਸਰਬੱਤਰ ਹੰਤਾ ਕਿ ਸਰਬੱਤਰ ਗੰਤਾ ਕਿ ਸਰਬੱਤਰ ਭੇਖੀ ਕਿ ਸਰਬੱਤਰ ਭੇਖੀ ਕਿ ਸਰਬੱਤਰ ਕਾਜੈ ਕਿ ਸਰਬੱਤਰ ਰਾਜੈ ਕਿ ਸਰਬੱਤਰ ਸੋਖੈ ਕਿ ਸਰਬੱਤਰ ਪੋਖੈ ਕਿ ਸਰਬੱਤਰ ਤਰਾਣੈ ਕਿ ਸਰਬੱਤਰ ਪਰਾਣੈ ਕਿ ਸਰਬੱਤਰ ਦੇਸੈ ਕਿ ਸਰਬੱਤਰ ਭੇਸੈ ਕਿ ਸਰਬੱਤਰ ਮਾਨੈ ਸਦੈਵੰ ਪ੍ਰਧਾਨੈ ਕਿ ਸਰਬੱਤਰ ਜਾਪਿਐ ਕਿ ਸਰਬੱਤਰ ਥਾਪਿਐ ਕਿ ਸਰਬੱਤਰ ਭਾਨੈ ਕਿ ਸਰਬੱਤਰ ਮਾਨੈ ਕਿ ਸਰਬੱਤਰ ਇੰਦ੍ਰੈ ਕਿ ਸਰਬੱਤਰ ਚੰਦ੍ਰੈ ਕਿ ਸਰਬੰਗ ਕਲੀਮੈ ਕਿ ਪਰਮੰਗ ਫਹੀਮੈ ਕਿ ਆਕਲ ਅਲਾਮੈ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਕਲਾਮੈ ਕਿ ਹੁਸਨਲ ਵਜ਼ੂ ਹੈ ਤਮਾਮਲ ਰੁਜ਼ੂ ਹੈ ਹਮੇਸੁਲ ਸਲਾਮੈ ਸਲੀਖਤ ਮਦਾਮੈ ਗਨੀਵਲ ਸ਼ਿਕਸ਼ਤੈ ਗਰੀਵਲ ਪਰਸਤੈ ਬਲੰਦਲ ਮਕਾਨੈ ਜਮੀਨੁਲ ਜਮਾਨੈ ਤਮੀਜ਼ੁਲ ਤਮਾਮੈ ਰੁਜ਼ੂਅਲ ਨਿਧਾਨੈ ਹਰੀਫੁਲ ਅਜੀਮੈ ਰਜਾਇਕ ਯਕੀਨੈ ਅਨੇਕੁਲ ਤਰੰਗ ਹੈ ਅਭੇਦ ਹੈ ਅਭੰਗ ਹੈ ਅਜੀਜ਼ੁਲ ਨਿਵਾਜ ਹੈ ਗਨੀਮੁਲ ਖਿਰਾਜ ਹੈ ਨਿਰੁਕਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਤ੍ਰਿਮੁਕਤ ਵਿਭੂਤ ਹੈ ਪ੍ਰਭੁਗਤ ਪ੍ਰਭਾ ਹੈ ਸੁਯੁਗਤ ਸੁਧਾ ਹੈ ਸਦੈਵੰ ਸਰੂਪ ਹੈ ਅਭੇਦੀ ਅਨੂਪ ਹੈ ਸਮਸਤੋਪਰਾਜ ਹੈ ਸਦਾ ਸਰਬਸਾਜ ਹੈ ਸਮਸਤੁਲ ਸਲਾਮ ਹੈ ਸਦੈਵਲ ਅਕਾਮ ਹੈ ਨਿਰਬਾਧ ਸਰੂਪ ਹੈ ਅਗਾਧ ਹੈ ਅਨੂਪ ਹੈ ਓਂ ਆਦ ਰੂਪੇ ਅਨਾਦੀ ਸਰੂਪੇ ਅਨੰਗੀ ਅਨਾਮੇ ਤ੍ਰਿਭੰਗੀ ਤ੍ਰਿਕਾਮੇ ਤ੍ਰਿਵਰਗੰ ਤ੍ਰਿਬਾਧੇ ਅਗੰਜੇ ਅਗਾਧੇ ਸੁਭੰ ਸਰਬ ਭਾਗੇ ਸੋ ਸਰਬਾ ਅਨੁਰਾਗੇ ਤ੍ਰਿਭੁਗਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਅਛਿਜ ਹੈ ਅਛੂਤ ਹੈ ਕਿ ਨਰਕੰ ਪ੍ਰਣਾਸ ਹੈ ਪ੍ਰਿਥਿਉਲ ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੈ ਨਿਰੁਕਤ ਪ੍ਰਭਾ ਹੈ ਸਦੈਵੰ ਸਦਾ ਹੈ ਵਿਭੁਗਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਪ੍ਰਯੁਗਤ ਅਨੂਪ ਹੈ ਨਿਰੁਕਤ ਸਦਾ ਹੈ ਵਿਭੁਗਤ ਪ੍ਰਭਾ ਹੈ ਅਨੁਕਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਪ੍ਰਯੁਗਤ ਅਨੂਪ ਹੈ ਚਾਚਰੀ ਛੰਦ ਅਭੰਗ ਹੈ ਅਨੰਗ ਹੈ ਅਭੇਖ ਹੈ ਅਲੇਖ ਹੈ ਭਰਮ ਹੈ ਅਕਰਮ ਹੈ ਅਨਾਦ ਹੈ ਜੁਗਾਦ ਹੈ ਅਜੈ ਹੈ ਅਭੈ ਹੈ ਅਭੂਤ ਹੈ ਅਧੂਤ ਹੈ ਅਨਾਸ ਹੈ ਉਦਾਸ ਹੈ ਅਧੰਧ ਹੈ ਅਬੰਧ ਹੈ ਅਭਗਤ ਹੈ ਵਿਰਕਤ ਹੈ ਅਨਾਸ ਹੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਨਿਚਿੰਤ ਹੈ ਸੁਨਿੰਤ ਹੈ ਅਲਿਖ ਹੈ ਅਦਿਖ ਹੈ ਅਲੇਖ ਹੈ ਅਭੇਖ ਹੈ ਅਢਾਹ ਹੈ ਅਗਾਹ ਹੈ ਅਸੰਭ ਹੈ ਅਗੰਭ ਹੈ ਅਨੀਲ ਹੈ ਅਨਾਦ ਹੈ ਅਨਿਤ ਹੈ ਸੋ ਨਿਤ ਹੈ ਅਜਾਤ ਹੈ ਅਜਾਦ ਹੈ ਚਰਪਟ ਸ਼ੰਤਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਰਬੰ ਹੰਤਾ ਸਰਬੰ ਗੰਤਾ ਸਰਬੰ ਖਿਆਤਾ ਸਰਬੰ ਗਿਆਤਾ ਸਰਬੰ ਹਰਤਾ ਸਰਬੰ ਕਰਤਾ ਸਰਬੰ ਪ੍ਰਾਣੰ ਸਰਬੰ ਤ੍ਰਾਣੰ ਸਰਬੰ ਕਰਮੰ ਸਰਬੰ ਧਰਮੰ ਸਰਬੰ ਜੁਗਤਾ ਸਰਬੰ ਮੁਕਤਾ ਰਸਾਵਲ ਸ਼ੰਤਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਮੋ ਨਰਕ ਨਾਸੇ ਸਦੈਵੰ ਪ੍ਰਕਾਸੇ ਅਨੰਗੰ ਸਰੂਪੇ ਅਭੰਗੰ ਵਿਭੂਤੇ ਪ੍ਰਮਾਥੰ ਪ੍ਰਮਾਥੇ ਸਦਾ ਸਰਬਸਾਥੇ ਅਗਾਧ ਸਰੂਪੇ ਨਿਰਬਾਧ ਵਿਭੂਤੇ ਅਨੰਗੀ ਅਨਾਮੇ ਤ੍ਰਿਭੰਗੀ ਤ੍ਰਿਕਾਮੇ ਨਿਰਭੰਗੀ ਸਰੂਪੇ ਸਰਬੰਗੀ ਅਨੂਪੇ ਨਾ ਪੋਤਰੈ ਨਾ ਪੁੱਤਰੈ ਨਾ ਸਤਰੈ ਨਾ ਮਿੱਤਰੈ ਨਾ ਤਾਤੈ ਨਾ ਮਾਤੈ ਨਾ ਜਾਤੈ ਨਾ ਪਾਤੈ ਨਿਰਸਾਕੰ ਸਰੀਕ ਹੈ ਮਿਤੋ ਅਮੀਕ ਹੈ ਸਦੈਵੰ ਪ੍ਰਭਾ ਹੈ ਅਜੈ ਹੈ ਅਜਾ ਹੈ ਭਗਵਤੀ ਸ਼ੰਤ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿ ਜ਼ਾਹਰ ਜ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿ ਹਾਜ਼ਰ ਹਜ਼ੂਰ ਹੈ ਹਮੇਸੁਲ ਸਲਾਮ ਹੈ ਸਮਸਤੁਲ ਕਲਾਮ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਕਿ ਹੁਸਨਲ ਚਿਰਾਗ ਹੈ ਕਿ ਕਾਮਲ ਕਰੀਮ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਕ ਰਹੀਮ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜੀ ਦਹਿੰਦ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਕ ਰਹਿੰਦ ਹੈ ਕਰੀਮੁਲ ਕਮਾਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਸਨਲ ਜਮਾਲ ਹੈ ਗਨੀਮੁਲ ਖਰਾਜ ਹੈ ਗਰੀਬੁਲ ਨਿਵਾਜ ਹੈ ਹਰੀਫੁਲ ਸ਼ਿਕਨ ਹੈ ਹਰਾਸੁਲ ਫਿਕਨ ਹੈ ਕਲੰਕੰ ਪ੍ਰਣਾਸ ਹੈ ਸਮਸਤੁਲ ਨਿਵਾਸ ਹੈ ਅਗੰਜਲ ਗਨੀਮ ਹੈ ਰਜ਼ਾਇਕ ਰਹੀਮ ਹੈ ਸਮਸਤੁਲ ਜੁਬਾਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਰਾਂ ਹੈ ਕਿ ਨਰਕੰ ਪ੍ਰਣਾਸ ਹੈ ਬਹਿਸਤੁਲ ਨਿਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬਲ ਗਵਨ ਹੈ ਹਮੇਸੁਲ ਰਵਨ ਹੈ ਤਮਾਮੁਲ ਤਮੀਜ਼ ਹੈ ਸਮਸਤੁਲ ਅਜੀਜ਼ ਹੈ
परम परम ईश है समस्तल अदीश है अदेशल लेख है अमेशल अपेख है जमीनल जमा है अमीकुल इमा है करीमुल कमाल है कि जुरत जमाल है के अचलंग प्रकाश है के मित्तो सुबास है के अजब स्वरूप है के मित्तो विभूत है के मित्तो पसा है के आत्म प्रभा है के अचलंग अनंग है के मित्तो अपंग है मद पार शंत प्रसाद मुन मन प्रणाम गुणगन मुदाम अर बर अगंज हर नर पर पंज अनगन प्रणाम मुन मन सलाम हर नर अखंड बर नर अमंड अनुभव अनास मुन मन प्रकाश गुणगन प्रणाम जल थल मुदाम अनशिज अंग आसन भंग उपमा पार गत मितोदार जल थल अमंड दिस विस अपंड जल थल महंत दिस विस बेअंत अनुभव अनास तिर तर तुरास अजान वाहो एक सदा हो ओंकार आद कथनी अनाद खल खंड ख्याल गुरबर अकाल कर कर प्रणाम चित चरण नाम अनछिज गात आज जिना बात अनझंज गात अन रंज बात अन टुट भंडार अन ठट अपार आडीठ धर्म अत टीठ कर्म अणबरण अनंत दाता महंत हर बोल मना छंदता प्रसाद करुणालय है अर्कालय है कलखंडन है महमंडन है जगतेश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्वोबारण है त्रित के तरण है जग के करण है मन मान्य है जग जान्य है सर्वं पर है सर्वंकर है सर्व पास्य है सर्वनाश्य है करुणा कर है विसंबर है सर्वेश्वर है जगतेश्वर है ब्रह्मंडस है खलखंडस है परते पर है करुणा कर है अजपा जप है अथपा थप है अकृता कृत है अमृता मृत है अमृता मृत है करणा कृत है अकृता कृत है तरणी तृत है अमृतेश्वर है परमेश्वर है अकृता कृत है अमृता मृत है अजबा कृत है अमृता मृत है नरनायक है खलकायक है विसंबर है करुणालय है निरपनायक है सर्वपायक है पवपंजन है अरगंजन है रिपतापन है जप जापन है आकलंकृत है सर्वाकृत है कर्ता कर है हर्ता हर है परमात्म है सर्वात्म है आत्म बस है जस के जस है भुजंग प्रयात छंद नमो सूरज सूरजे नमो चंद्र चंद्रे नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्रे नमो अंधकारे नमो तेज तेजे नमो बृंद बृंदे नमो बीज बीजे नमो राज संग ताम संग शांत रूपे नमो परम तत्ंग तत्ंग स्वरूपे नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो युद्ध युद्धे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो भोज भोजे नमो पान पाने नमो कलह कर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्र इंद्रे अनादंग विभूते कलंकार रूपे अलंकार अलंके नमो आसासे नमो बांक बंके अपंगी स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकाले अनंगी अकामे एक अछरी छंद अजय अलय अपय अभय अपू अजु अनास अकाश अगंज अपंज अलख अपख अकाल दयाल अलेख अपेख अनाम अकाम अगाह अटाह अनाथे परमाथे अजोनी अमोनी न रागे न रंगे न रूपे न रेखे अकर्मंग अपरमंग अगंजे अलेखे भुजंग प्रियात छंद नमस्तुल परणामे समस्तुल परणासे अगंजल अनामे समस्तुल निवासे निरकामंग विभूते समस्तुल स्वरूपे कुकर्मंग प्रणासी सुतर्मंग विभूते सदा सचिदानंद सतरंग प्रणासी करीमल कुनिंदा समस्तुल निवासी अजैब विभूते गजैब गनीमे हरियंग करियंग करीमल रहीमे चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुगते सुजंभव सुमंग सर्वदा सर्व जुगते दुकालंग प्रणासी दयालंग स्वरूपे सदांग संगे अपंगंग भूते चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुगते सुजंभव सुमंग सर्वदा सर्व जुगते दुकालंग प्रणासी दयालंग स्वरूपे सदांग संगे अपंगंग भूते इको ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह सवैये श्री मुख वाक पातशाही दसवीं श्रावक शुद्ध समूह सिधान के देख फिरो कर जोग जति के सूर सरार्दन शुद्ध सुधारक संत समूह अनेक मति के सारे ही देश को देख रहे हो मत को न देखियत प्राण पति के श्री भगवान की पाय कृपा हूं ते एक रति विनेक रति के माति मतंग जरे जर संग अनूप तंग सुरंग सुवारे कोट तरंग कुरंग से कूदत पौन के गौन को जात निवारे पारी पुजान के पूप पली विद न्यावत शीस न जात विचारे ते पय तो कहां पय पूप तंत को नांगे ही पाए पधारे
जीत फिरे सब देश दिसान को बाजत ढोल मृदंग नगारे गुंजत गूढ़ गजान के सुंदर हिंसत है हजराज हजारे भूत भविख भवान के भूपत कौन गने नहीं जात विचारे श्रीपत श्री भगवान भजे विन अंत को अंत के धाम सिधारे तीर्थ नान दया दम दान सुसंजम नेम अनेक सिख है वेद पुराण कतेब कुरान जमीन जमान सुबान के पेख है पौन आहार जति जत तार सब ऐसु विचार हजार क देख है श्री भगवान भजे बिन भूपते एक रति बिन एक न लेख है शुद्ध सिपाह दुरंत दुबाह सोसा सना दुर्जान दलेंगे भारी गुमान भरे मन में कर पर्वत पंख हले न हलेंगे तोर अरीन मरोर मवासन माते मतंगन मान मलेंगे श्रीपत श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहान निदान चलेंगे वीर अपार बड़े बरियार अवचार है सार की धार पशैया तोरत देश मलिंद मवासन माते गजान के मान मलैया गाड़े गढ़ान के तोड़ नहार सुबातन ही चकचार लवैया साहिब श्री सब को सिर नायक जाचक अनेक सो एक दवैया दानव देव फनिंदन साचर भूत भविख भवान जपेंगे जीव जिते जल में थल में पल ही पल में सब थाप थपेंगे पुन प्रतापन बाढ़ जैत धुन पापन के बहु पुंज खपेंगे साध समूह प्रसन्न फिरें जग सत्र सब अवलोक चपेंगे मानव इंद्र गजेंद्र नराद अपजौन त्रिलोक को राज करेंगे कोट स्नान गजाद कदान अनेक स्वयंबर साज भरेंगे ब्रह्म महेश्वर विष्ण सचिपत अंत पद से जम फास परेंगे जे नर श्रीपत के परस हैं पगते नर फेर न देह तरेंगे कहां पयो जो दो लोचन मूंद के बैठ रहे हो बक ध्यान लगायो नात फिरो लिए सात समुन्द्र लोक गयो परलोक गवायो बास कियो बिखियान सो बैठ के ऐसे ही ऐसो बैस बितायो साच कहो सुन ले हो सब जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो काहू ले पाहन पूज तरयो सिर काहू ले लिंग गरे लटकायो काहू लख्यो हर अवाची दिशा में काहू पशाह को शीस निवायो को बुतान को पूजित है पस को मृतान को पूजन तायो कूर किरिया उर्जो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो को बुतान को पूजित है पस को मृतान को पूजन तायो कूर किरिया उर्जो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो इको ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह पातशाही दसवीं चौपाई बहर असुर का काठ समाथा श्री अस्केत जगत के नाथा द्वितीय बान सो दो अर कर काठ दयो अस्तुज नर नाहर पुनराशिष का काटा सीसा श्री अस्केत जगत के ईसा पोहपन भ्रष्ट गगन ते पई सब नयान बधाई दई धन धन लोगन के राजा दुष्टन दाह गरीब निवाजा खल पवन के सिरजन हारे दास जान मोहले हो बारे कव्यो वाच बेनती चौपई हमरी करो हाथ दय रक्षा पूर्ण होए चित्त की इच्छा तव चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतपारा हमरे दुष्ट सबे तुम कावहो आप हाथ दय मोहे बचावहो सुखी बसै मोरो परवारा सेवक सिख सबे करतारा मोर अच्छा निज कर दय करिय सब बैरन को आज संघरिय पूर्ण होए हमारी आसा तोर भजन की रह प्यासा तुम्हें शाड़ कोई अवर न त्याऊं जो बर चाहूं सुपमते पाऊं सेवक सिख हमारे तारी है चुन चुन सत्र हमारे मारी है आप हाथ दे मुझे उबरी है मरण काल का त्रास निवरी है हुजो सदा हमारे पछा श्री अस्तुजू करिय हो रक्षा राख ले हो मोहे राखन हारे साहेब संत सहाय प्यारे दीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर्दश कंता काल पाए ब्रह्मा बप तरा काल पाए शिवजू अवतरा काल पाए कर विष्णु प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जवन काल जोगी शिव कियो वेदराज ब्रह्मा जू थियो जवन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताहे हमारा जवन काल सब जगत बनायो देव दैत जछन उपजायो आदि अंते कै अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजा जिने आप सवारी शिवकन को सब गुण सुख दियो सतरन को पलमो बद कियो
ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਣਤ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਣਤ ਚੀਟੀ ਤੇ ਕੁੰਚਰ ਅਸਥੂਲਾ ਸਭ ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰ ਫੂਲਾ ਸੰਤਨ ਦੁਖ ਪਾਏ ਤੇ ਦੁਖੀ ਸੁਖ ਪਾਏ ਸਾਧਨ ਕੇ ਸੁਖੀ ਏਕ ਏਕ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਣੈ ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਪਟ ਪਟ ਕੀ ਜਾਣੈ ਜਬ ਉਦ ਕਰਖ ਕਰਾ ਕਰਤਾਰਾ ਪਰ ਜਾ ਧਰ ਤਬ ਦੇਹ ਅਪਾਰਾ ਜਬ ਆਕਰਖ ਕਰਤ ਹੋ ਕਬ ਹੂੰ ਤੁਮ ਮੈਂ ਮਿਲਤ ਦੇਹ ਧਰ ਸਭ ਹੂੰ ਜੇਤੇ ਬਦਨ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਭ ਧਾਰੈ ਆਪ ਆਪਣੀ ਬੂਝ ਉਚਾਰੈ ਤੁਮ ਸਭ ਹੀ ਤੇ ਰਹਿਤ ਨਿਰਾਲਮ ਜਾਣਤ ਭੇਦ ਭੇਦ ਅਰਿਆਲਮ

अनुमानत महामूढ़ कछ भेद न जानत महादेव को कहत सदा शिव निरंकार का चीनत नह पिव। आप अपनी बुद्ध है जेती बरणत भिन्न भिन्न तुहे तेती तुमरा लखा न जाहे पसारा किह विद सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप स्वरूपा रंक पयो राव कहीं भूपा अंडज जेरज सेत जकीनी उत्पुज खान बहुर रच दीनी। कहूं फूल राजा है बैठा कहूं सिमट पयो शंकर कैठा सगरी सृष्टि दिखाए अचंभव आदि जुगाद स्वरूप सुजंभव। अब रक्षा मेरी तुम करो सिखो बार सिख संगरो दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रण काता। जे अस्तुज तव सरणी परे तिनके दुष्ट दुख्त है मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार ते आए हैं ताके काल निकट नह आए हैं रक्षा हो ताहे सब काला दुष्ट रिष्ट तरह तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहे निहिर हो ताके ताप तन कुमो हरि हो रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट शासव सकै न कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फास्ते ताहे उबारा जिन नर नाम तिहारो कहा दारिद दुष्ट दोख ते रहा। खड़ग के तुम्हें शरण तिहारी आप हाथ दैले हो बारी सर्व ठौर मोहो सहाई दुष्ट दोख ते ले हो बचाई। कृपा करी हम पर जग माता ग्रंथ करा पूर्ण शुभ राता किलविक सकल देह को हरता दुष्ट दोखियन को शय करता। श्री अस्तु जब पय दयाला पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला मन बांश्त फल पावे सोई दुख न तिसे व्यापत कोई। अड़िल सुने गुंग जो याहे सो रसना पावई सुने मूढ़ चित लाए चतरता आवई। दुख दर्द पाओ निकटना तिन नरके रहे हो जो यहाँ की एक बार चौपई को कहे। दुख दर्द पाओ

दुख सब विसारणा अंगीकार ओह करे तेरा कार्ज सब सवारणा। सबना गलां समरथ स्वामी सो क्यों मनोह विसारे कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले। साचे साहिबा क्या नाहीं घर तेरे करता तेरे सब किश है जिस देहे सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे। नाम जिन कह मन वसिया वाजे शब्द कनेरे कहे नानक सच्चे साहिब क्या नाहीं घर तेरे। साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जिन भुखां सब गवाईया कर शांत सुख मन आए वसया जिन इच्छा सब पुजाईया सदा कुर्बान कीता गुरु विटह जिस दियां एह वडियाईया। कहे नानक सुनो संतो सब धरो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो। वाजे पंच शब्द तित घर सुभागै घर सुभागै शब्द वाजे कलां जित घर धारियां पंच दूत।

हाथ दोनों गोड़िया ते रखे ने उत्ते सिर रखे थोड़ी दूरों रावी नदी पे वगदी कान जेड़े ने कुछ सुनने दी कोशिश पे कर दे ने ए बीबी पिंडू अनपढ़ है पर मन विच रब दा बड़ा प्यार है। तीन दिन हो गए ने इस बीबी नू ए आवाज सुन दे रोज आंदी ए पति नू रोटी खवाण वास्ते आवाज विच ऐसी खिच है इत्थे बैठ के ए रोज आवाज सुन दी अज तीसरा दिन है। कदी कदी आवाज सुनाई दिंदी कदी पानी दे शोर विच गुम हो जांदी है पर जदों आवाज सुनदी है ता मन खिंचिया जांदा है। कहन लगी मना चल के देखा ये गाण वाला कौन है। कहन लगी ढाडी भी सुनी देने व्याहां दे विच गीत भी सुनी देने गाई दे भी ने पर एडी मिठी आवाज अज तक सुनी नहीं चल के देखा भला कौन है गाण वाला।

खाली भांडे सिर ते रख के उस पासे तुर पई जिधरों आवाज आ रही आवाज सुन के जिधरों आवाज आ रही है उस पासे ए बीबी तुरी।

बिल्ली थोड़ी दूर गई, आवाज आनी बंद हो गई। इस बीबी ने देखिया एक वजंतरी बैठा, वजंतरी कहंदे ने साज बजान वाला। इस वजंतरी दी झोली विच एक साज पिया। ए बीबी चकदी चकदी कोल गई, मथा टेकिया, पुछिया, साईं जी तुसी केड़े देश दे लोक हो, कित्थों आए हो, गांदे हो के जादू तोड़दे हो? ताड़ी भी सुनी देने, व्यावां विच गीत भी सुनी देने, पर जो तुसी गांदे हो ए कदी नहीं सुनिया। सुनिया इंदर लोक विच देवते बहुत अच्छा गांदे, तुसी इंदर लोक तो ता नहीं आए? वो वजंतरी कहन लगा, नहीं बेटा, असी ऐसे देश दे लोक हाँ, इत्थे साडे माता पिता, इत्थे साडे भैण भरा, असी इंदर लोक तो नहीं आए। ए बीबी चार चपेरे तकदी है ते नाले कहंदी है, नहीं तुसी झूठ बोलदे हो, जे तुसी इस देश दे होवो तुहानू भुख ना लगी? तीन दिन हो गए ने मैनू देखदे आ, ना तुसी किधरे गए ना आए, ना तुहाडे कोल कोई भांडा ना चुल्हा, तुसी खांदे की हो, किदे आसरे जींदे हो? तां ओ वजंतरी कहन लगा, बेटा सानू भुख भी लगदी, असी खाने भी हां, मैनू तां भुख लगदी रहिंदी है, पर जिहड़ा मेरा मालक है वो तां नाम दे आसरे जींदा है। इस बीबी ने चार चपेरे निगाह दौड़ाई पर कोई नजर ना आया। कहन लगी, तुहाडा मालक कित्थे? वजंतरी कहन लगा, बेटा ओ जरा टहलण वास्ते गए ने। कहन लगी, साईं जी जे मैं दुध लैके आवां तुसी दुध पी लोगे? वजंतरी कहन लगा, हां बेटा, जे कोई श्रद्धा ते प्यार दे नाल मेरे मालक नूं दुध भेट करदा है, वो टुट के दुध दी जगह पुत्र दे दिंदा है, पुत्र दा नां लिया। तां इस बीबी ने ठंडा होका भरिया, क्योंकि घर पुत्र कोई नहीं सी, थोड़ी जी आस बची कि शायद इथों कोई पुत्र मिल जावे। मथा टेकिया ते घर चली गई दुध लियाण।

जिथे गुरु नानक होवे उथे पाप किथे उथे पखंड किथे। ए बीबी उस गुरु नानक दे दर्शना वास्ते जा रही है जिदे दर्शना वास्ते दुनिया तरसदी है ते पिछे पिछे डांग लैके लुकदा लुकदा एदा घर वाला दुधा भी तुरिया जा रहा है। पर धन गुरु नानक साहब कहंदे ने हों वारी हों वार ने कुर्बान तेरे नाम नूं अकाल पुरख मैं वारी मैं बलिहार जाना।

तू शख कह लगा नहीं ए दुध महाराज साडे घरों ही आया असी तो रोज ही पीने या तुसी पियो महापुरुषां दे तीन वचन हुंदे ने साहबां ने तीन वारी कहा दुध ने तीनों वारी इनकार कर दिता हुण पूरा गुरु ओ जिहड़ा सिख दे मन विच मान नहीं रहण दिंदा कह लगे चंगा दुध आ तेरी मर्जी यह साडा डोलू लै ऐ नदी पई वगदी है इथों पानी दा भर लिया असी हाथ धो लईए फिर दुध पियांगे डोलू लिया दुध आ नदी ते चला गया।

खेत उदा डोलू लैके नदी से पहुंचे। डोलू पानी का भर के तुर पे, तीन चार कदम तुरे। अचानक डोलू ते निगाह गई ता डोलू विच दुध नजर आया। अखां मलमल के देखदे पर सचमुच दुध है, बड़ा हैरान होया। कहन लगा भरिया ते पानी सी, दुध किवें हो गया। वापस नदी ते मुड़े, नदी वल देखिया, नदी विच पानी डोलू विच दुध, बड़ा हैरान होया। उस दुध नू नदी विच डोल के फिर डोलू पानी विच उतां इकट्ठा करके चंगी तरह डोलू फिर बाहर कढ़िया, बड़ा हैरान होया। नदी विच पानी डोलू विच दुध, पांच छे कदम उत्ते चला गया। फिर डोलू भरिया, डोलू नदी तो बाहर कढ़े है, बड़ा हैरान। डोलू विच दुध, नदी वाल निगाह मारी ता सारी नदी इनू दुध दी बगदी होई नजर आई। हैरानगी दी हद ना रही, अपने खूह ते गया, उत्थे भी दुध मिले। जिथे भी गया इनू पानी ना मिले, दुध ही दुध मिले, ता मान टुट गया। कहन लगा ओ मना, एक गड़वा गुरु नु दुध भेट करके कहना है कि मैं गुरु नु दुध प्यारी। ओ मना, जेड़ा गुरु दुध दिया नदियां पिया वगांदा है, उस गुरु नु तू की भेट दे सकदा है। मान टुटा, आके गुरु साहिबां दे चरणा

सतगुरु जी कहन लगे तो दे यार, बड़े दयाल हां तेरे ते, कुछ मंग लै। दोदा कहन लगा नहीं पातशाह, आप दा दिता बहुत कुछ है। महापुरुषां दे तीन बचन हुंदे ने, तीसरा बचन कीता दोदिया कुछ मंग लै। ता दोदा कहन लगा पातशाह जे तुखे हो ता ए वर दियो, बहुत सारी जमीन होवे। जिमीदार सी दोदा, बहुत सारी जमीन होवे, लवेरियां मच्छां गावां होन, दो तीन बलदा दियां जोड़ियां होन, सोहने मकान होन। साहब जी कहन लगे ये सब कुछ मिल जाएगा, कुछ और मंग लै। कहन लगा बस पातशाह और कुछ नहीं चाहिए। मर्दाना कोल बैठा है, होली जी मर्दाना कहन लगा दुदिया ओ सतगुर जी टुटे ने, नाम दी दात मंग ले, ते जिहड़ी चीज बारे ज्ञान ना होवे ओ चीज आपां लैंदे नहीं। दोदा होली जी कोलों कहन लगा मैनू तां जमीन मझां गावां चाहीदियां ने, मैं नाम की करना है, मेरे किस तों किया तां होली, पर सतगुरां सुन लिया ते नाले हस पए। कहन लगे दुदिया ये सब कुछ मिलेगा, तेरी घरवाली सतसंगण है, तेरी घरवाली दे सदका जा तेनू नाम दी दात भी प्राप्त होवेगी। कई बीबियां इन्ने भागा वालियां हुंदियां ने कि जिन्हां दी सदका कुलां तर जांदियां ने। हुण दोदा भी सतसंगी बन गए, होर भी जिन्ने जिन्ने गुरु नानक दी सोभा सुनी ओ भी आण लग पए। जेड़ा भी आंदा है फिर होर किधरे नहीं जांदा, जंगल दे विच आनंद ही आनंद हो गया हर पासे।

ये धन गुरु नानक साहब की शोभा बड़ी हो रही है, इस नु खत्म करना चाहिए। दुनिया विच ऐसे इंसान भी ने जेड़े ना चंगा काम करते ने, ना किसी नु करन दिंदे, ना आप रब वाले पासे जाना, ते कोशिश होंदी है कि ना ही दूसरा कोई जावे। ऐसे सन ये लोग, ये सारे जने इकट्ठे होके लाहौर जा पहुंचे, जिस जगह धन गुरु नानक साहब बैठे सन, ये एक मुसलमान हाकम करोड़िए की जगह सी। सत कोठियां, सत झंडे झुलते सन, बड़ा अमीर सी। ओदे कोल जा चुगली कीती, करोड़िया तू लाहौर बैठे, तेरी धरती ते एक साधु ने कब्जा कर लिया, हाली तक कच्चे छप्पर पाए ने, उठाना सौख है, जे पक्के मकान बना ले, जे पक्के मकान उस साधु ने बना ले तो उन्हें उठाना औखा हो जाएगा, होने ही कुछ कर। ये सुन के करोड़िए नु बड़ा गुस्सा आया, कह लगा अच्छा मेरी धरती ते साधु ने कब्जा कर ले। उस वेले हुक्म दिता, 100 जवान डांगा वाला तैयार किया, अपने हाथ विच भी डांग फड़ी, करोड़िया घोड़े ते चढ़िया, ते धन गुरु नानक साहब नू मारन वास्ते तुर पिया। कहन लगा जेड़ा भी उत्थे साधु ते संगत बैठी है सारियां नू मार मार के धरती ते विछा देंगा। तुर पिया लाहौर तो, पर जदू अध विच आया घोड़ी त्रबकी, करोड़िया थले डिग पिया घोड़ी तू, लत टुट गई, फिर वापस चला गया। एक महीने दे बाद ठीक होके फिर 100 जवान नाल लिया, फिर धन गुरु नानक साहब नू मारन वास्ते तुरे। इंसान जदू पाप करन लगदा कई वारी ठोकर लगे समझ आंदा है, ते कई वारी ठोकरा लगदियां ने तां वी नहीं समझदा, पर एक समय ऐसा आंदा है कि जदों इंसान नू झुकना ही पैंदा है। करोड़िया अज फिर ठीक होके धन गुरु नानक साहब नू मारन वास्ते तुर पिया, जेड़ा कि गुरु नानक मरे।

आप ही हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। कहन लगा बादशाह, इस सारी धरती आप दी, आप दा हुक्म होवे ता इथे मकान बनन, बाजार बनन।

बिना पद पाया तथे निक समाया इना जनता की वहां सीखना ही वेखी जल तू पाया इकरा नु तू मेला का पद पाया गुरकृपा ते जानिया जिस सदा बहाया चाहे देव भाई तुम्हारा सपना।

की आवाज है। ऐसों से संदूष के पाठ्य जी समाधि आवाज की कर रहे हो तो हजूर कह

फिर कलेह तुर जाए। एकांत बह के अपने सारे की मूल मंत्र का जाप करे, संत बड़ा महम बड़ी शक्ति है। ये दंगारी मंत्र जितना जप लो एदा बड़ा काम, तुरदियां फिरदियां उठदियां बहदियां हर ना वो नाम वाहिगुरु जी का मंत्र जपांगे। सतगुरु दियां मेहरां फिर सानू की मिलेगा, साडा जीवन सफला फिर साडा एक लोक सुखी पर लोक अखीरला आस्था जी वार मिलकर लगाइए, उस उपरंत कीर्तन मात्री और

अमृत जल धारा राम, अमृत जल धारा पूर्ण सावज सगल मनोर पूरे, जय जयकार भयो जगंत लाभे सगल पूरे, पूर्ण गुरु देव राशि।

अष्टपदी पूरे गुर का सुने उपदेश पार ब्रह्म निकट कर पेख सास सास सिमरो गोविंद मन अंतर की उतरे चिंद आस अनित त्यागो तरंग संत जना की तूर मन मंग आप छोड़ बेनती करो साध संग अगन सागर करो हर तन के पर लेहो पंडार नानक गुरु पूरे नमस्कार खेम कुशल सहज आनंद साध संग भज परमानंद नरक निवार उतारो जियो गुण गोविंद अमृत रस पियो चित चितवो नारायण एक एक रूप जाके रंग अनेक गोपाल दामोदर दीन दयाल दुख पंजन पूरन कृपाल सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी का यह अतार उत्तम श्लोक साध के बचन अमलीक लाल एह रतन सुनत कमावत होते उतार आप तरह लोके निस्तार सफल जीवन सफलता का संग जाके मन लागा हर रंग जय जय शब्द अनाहद वाजय सुन सुन आनंद करे प्रभ गाजय परगटे गोपाल महांत के माथे नानक उदरे तिन कै साथे शरण जोग सुन सन्नी आए कर कृपा प्रभ आप मिलाए मिट गए बैर भय सबरीन अमृत नाम साध संग लैन सो प्रसन्न भय गुरुदेव पूर्ण होई सेवक की सेव आल जंजाल विकारते रहते राम नाम सुन रसना कहते कर प्रसाद दया प्रवतारी नानक निभी खेप हमारी प्रभ की उस्तत करो संत मीत सावधान एकाग्र चीत सुखमनी सहज गोविंद गुण नाम जिस मन बसैस होत निदान सर्व इच्छा ताकि पूर्ण होए प्रधान पुरख प्रगट सब लोए सबते ऊच पाए स्थान बहुर न होवे आवन जान हर तन खाट चले जन सोए नानक जिसे प्राप्त होए खेम शांत रिद नव निद बुद्ध ज्ञान सर्व तह सिद्ध विद्या तप जोग प्रव ध्यान ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान चार पदार्थ कमल प्रगास सब कै मद सगल ते उदास सुंदर चतुर सतका बेता समदर्शी एक दृष्टेता ए फल तिस जन कै मुख पने गुरु नानक नाम।

उल्टी प्यारी टुरना किते गुरु सच्चे पातशाह वल मेरी पीठ ना हो जाके सात सगत बोलो श्री तुरते हुए पिछली प्यारी अदा।

के बादशाह पिट हो रही है हुण इत्थों दी मैनू माफी दे दे। ते आपने फिर जाना ब्यासा नदी तो जल दी गागर भरनी सिर ते चुकनी ते फिर सत्कार दे नाल मन विच पावन।

खुंजाया जो सेवा तो बिना चला गया। आज 12 साल का आखिरी दिन है, आज एडा चखड़ चल रहा है, एडा मीह पै रहा है कि रस्ता नजर नहीं आउंदा। आप पुठी प्यारी तुरदे हुए अद्धे रस्ते पहुंचे।

गुरु पातशाह कितों हुण पिट हो रही है, माफी दे देना। ते फिर व्यासा वाल तुर पे, गागर जल्दी भरी सिर ते चुकिया। अज एडा मीह पै रहा है, जखड़ चुल रहे हैं।

ख्याल रख तेरी सेवा और तेरे नित नेम विच फर्क ना पवे तां बख्शीशां दा हकदार होवेगा। गुरु रामदास सच्चे पातशाह इस शब्द विच बख्शे।

चौपी बादशाही दसवीं हमरी करो हाथ देर अच्छा पूर्ण होए चित की इच्छा तब चरण मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतपारा हमरे दुष्ट सवै तुम कावो आप हाथे मोए बचावो सुखी बसे मोरो परवारा सेवक सिख स्वै करतारा मोर अच्छा निज कर दे करिए सब एरन को आज संगरिए पूर्ण होए हमारी आशा तोर भजन की रहे प्यासा तुम्हें छाड़ कोई अवर न त्याऊं जो बर चाहो सो तुम ते पाऊं।

जब उधर ठुकरा कर तारा परजा दर्द तब दे अपारा जब आकर कथो कबू तुम मैं मिलत दे तर सबू जेते बदन श्रेष्ठ सब धारे आप आपनी बूझ उचारे तुम सब ही ते रहत निरालम जानत भेद भेद अर आलम निरंकार निर्विकार निर्लम आत अनिल अनाथ असम ताका मूड उचारत पेदा जाको पेव न पावत बेदा ताको कर पाहन अनमान महामूढ़।

खान बहु रचनीनी, कहूँ फूल राजा है बैठा, कहूँ सिमट भयो संग्रह कैठा, सगरी श्रेष्ठ दिखाए अचंपव, आज गात स्वरूप स्वयंपव, अवृच्छा मेरी तुम करो, सिख उबार असिख संगरो।

आप अपनी बुद्ध है जेती पर्ण पिन पिन तुह तेती तुमरा लखा न जाए पसारा कहबत सिजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप स्वरूपा रंग पयो राव कहीं कूपा अंड जेर जसेत जकीनी।

जे अस तुझ तव सरणी परे तिनके दुष्ट दोख तह मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जोकल को एक बार ते आए हैं ताके काल निकट नए हैं रक्षा होए ताहे सब काला दुष्ट अरष्ट रहे तत्काला कृपा दृष्ट तन जाए निहर हो ताके ताप तनक मोहर हो रिद्ध सिद्ध कर्मो सब हुई दुष्ट छाह छह सके न कोई एक बार जिन तुम्हें सवार काल पास ते तय उबार जिन्नर नाम तहारो कहा दार

सत्संगी सज्जन गुरु के प्यार वाले जितने भी माई पाई साहिब गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी के पवित्र कदमों की हाजिरी भर रहे हो

ये माया साथ नहीं जानी। और हैरानी की गल है कि इसे माया विच सारा संसार मोया हुआ है। इस माया ने सबनों मोह रखिया है। किसी का भी मन माया तो परे नहीं जाता। कोई विरला ही इस गल नूं बुझदा है, समझदा है। तां पिता जी कहण लगे, नानक तैनू उपदेश देण वास्ते

अज कल घोड़ियां दा व्यापार बड़ा अच्छा है। पिता जी जेड़ा मैं व्यापार करना पिया सौदागरी करना पिया उस तो वेल नहीं। बेटा तू केड़ी सौदागरी करना पे मैनू तो वेला ही नजर आ और ना तेरिया गल्ला समझ आउंदियां ने

जे होर कोई काम नहीं करना तो नौकरी कर ला। तैनू मैं कोई नौकरी दिवा दिंदा हां।

सब देश खाली हो गया, किसी को पैसा नहीं। ता किसी ने एक सलाह दी कि एक होर भी तरीका है, ये तो डर का तरीका सी हुण लालच का, कि जे कोई एक भी पैसा लिया के देवे मैं अपनी लड़की का रिश्ता और अद्धा राज देंगा उसे। जदों वेख्या कि किसी कोल भी पैसा नहीं है तां एक नौजवान मन चला अपनी मां दे पास जाके रोण लग पिया, कहिंदा मां राज मिलदा ते बादशाह दी बेटी दा रिश्ता। मां ने बथेरा समझाया कि मैं तां उम्र गवाई है इस राज विच, कदे सुख नहीं वेख्या, इसने तां गरीबां दा खून नचोड़िया है, कदे किसे नूं सुख नहीं दिता, तू की उम्मीद करदा है, झूठी गल ते इतबार ना करता। खेड़े पै गया कि किधरे कोई लुको के रखिया हो, ता बहुत दिन जिद फड़ी रखी, ता मां ने दसिया कि मेरे पास ता नहीं रखिया, पर जदों तेरे पिता नूं दफनाया सी ता उस दे मुंह विच एक पैसा रखिया सी। कबर खोद लै उस दे मुंह विचों कढ लै, ओ ता हुण रस्म पूरी हो गई, जे ओ तैनू मिल जावे। कहिंदे ने उसने इसे तरह कीता, अपने बाप दी कबर खोद दित्ती, उसदे मुरदे शरीर विचों पैसा कढ लिया, कारू दे अगे चाई चाई जाके रखिया, उसने नाले तो उसनू बंदी बना लिया, गिरफ्तार कर लिया, नाले पैसा ले लिया। पुछया कित्थों लिया है, उसने दसी गल सारी कहानी, ता कारू ने सारियां कबरां खुदवा दित्तियां सी।

तू खालस सतगुरु हमारा। भी वो सिख भी इतनी उच्ची अवस्था नु प्राप्त होवेगा जेड़ा भरम ते भेख तो उच्चा हो जाए, भेखां दे विच सीमित न रह जाए। बाबा जी का अपना भेख कोई नहीं, जन कल्याण वास्ते जिहो जे भेख की जरूरत है उहो जिहा पहन लैंदे। लोकाई का जिहो जे भेस नाल भला होवेगा उहो जिहा भेस धारण करदा।

0: और बाबा जी का चेहरा दर्शन करके इतना आनंदित होया, कहन लगा महाराज कृपा करो आओ मेरे महलां विच। महलां विच चले गए, रोज सत्संग होण लगा। तो गुरु जी उस नूं उपदेश करदे ने रोज, उस दे मन दी मैल लैंदी है, मूत पलीती कपड़ होए, जे साबुण लई है ओह धोए, करिए मत पापा का संग, ओ धोपै नावें के रंग। ज्यों ज्यों बाबा जी की संगत करदा मैल लैंदी। एक दिन गुरु जी कहण लगे, कारू हुण असीं जाणा है, मित्रता की एक निशानी ए लै फड़ सूई, ए सूई ए मित्रता की निशानी है, सांभ के रखी। उसने पकड़ ली, कहिंदा जी बड़ी मेहर कीती, निशानी दिती। गुरु जी कहण लगे, पर यह निशानी असीं तेरे तो लै लैनी है। कदों लैनी है? गुरु जी कहण लगे, जदों मर के पहुंचांगे उस दरगाह विच, उस खुदावन की दरगाह, जदों तू पहुंचेगा ना, यह सूई लै लावे ते मेरी सूई मैनू उठे वापस कर दे। वो कहण लगा, जी मैं मर के सूई तो नहीं ले जा सकता, यह बचन झूठा किवें करां, तुहाडे नाल वादा किवें करां, मैं सूई नहीं ले जा सकता। क्या गुरु जी कहण लगे, कारू यह 40 गंज लै जावेगा, यह जड़ी जोड़ी है माया, गरीबां दियां झुग्गियां विचों भी कढ लई है, मरियां दियां कबरां विचों भी कढ लई है, यह नाल लै जावेगा, सूई तां लजा नहीं सकता। समझ आ गई, चरण फड़ लए, रोण लग पिया, आख्या गरीब नवाज कृपा करो। तां गुरु जी ने उपदेश दिता सी, भी हुण तेरा पार उतारा इवें होवेगा, जिस तरह लुटी है उवें वंड के। सदा वरत लंगर ला दे, देग चला सारे देश में, और सब नु वस्त्र वंड दे, और थां थां ते धर्मशाला बना दे, संगत हो दे। इतिहास विच जिक्र आउंदा है, उन्हां शब्दां च गुरु जी ने बचन कीता,
1: देख चलावो सगले देसन,
0: एकारो सारे अपने देश विच देख लंगर चला दो, कोई भुखा ना रह जाए।

ताती भावना लग गई, पार ब्रह्म शरण आई। नो हार्म कम्स टू देम हु आर अंडर वाहिगुरुज प्रोटेक्शन। ऑन ऑल फोर साइड्स इज माई लॉर्ड्स प्रोटेक्शन। आई हैव मेट द परफेक्ट लॉर्ड हु इज द क्रिएटर। ही हैज गिफ्टेड मी विद द बाम ऑफ लॉर्ड्स नेम एंड आई हैव एनश्राइंड लव फॉर हिम विद इन माई सेल्फ। The Preserver has protected me and cured me of all my ailments. The Lord has taken me under His wings and has become my protector.

प्यारे गुरुदेव जी, सच्चे पातशाह सतगुरु साहिब श्री गुरु अमरदास जी महाराज जी के चरण कमलों के नमस्कार। हजूर बाबा जी अपने इस अमृतमय वचन दे विच जो विचार पेश कर रहे हैं, बख्शिश कर रहे हैं, वो साढ़े प्रीवियस कीर्तना की जो लड़ी है उसके नाल संबंधित है। इस शब्द दे विच आख्या है कि क्या तुद कर्म कमाया है, कि तू की आके कीता है। इसका भाव कि कुछ करन दे वास्ते ये शरीर प्राप्त होया है, इसका भाव देर वाज वेरी इंपॉर्टेंट मिशन इन लाइफ टू बी कंप्लीटेड। देर वार सम वेरी इंपॉर्टेंट वर्क टू बी डन, ए जर्नी टू बी कंप्लीटेड, ए ड्यूटी टू बी फुलफिल्ड। कहते हैं हूं तक तू दस उस संबंध दे विच तू कुछ कीता है, की कीता है। इस शरीर मेरिया इस जग में आए के इस जगत दे विच आके क्या तुद कर्म कमाए, की कर्म तू कमाया है, की कीता है। और कल का जो कीर्तन सी उस शब्द दे विच महाराज जी ने आख्या सी अंधले क्या पाया जग आए, जगत दे विच आके तू की पाया है। विचार इक्को ही है। अज तीसरे जामे च गुरु नानक देव जी आख रहे हैं कि तू की कम कीता है। भाई गुरु नानक साहब कल दे शब्द दे विच फरमा रहे सन कि अंधले क्या पाया जग आए, तेन शरीर मिलिया सी उस शरीर दे नाल तू की पाया है, की अचीव कीता है। देखते हैं कि यह शरीर तेन दिता सी, इस दे नाल तू कुछ खास पाना सी, तू कोई कम करना सी, तू कुछ लाहा खटना सी, जिस दे वास्ते ए इंस्ट्रूमेंट दिता गया सी। पर कहते हैं ए इंस्ट्रूमेंट ही तू बिगाड़ लिया है, पूंडी चाल इसकी चाल खराब हो गई है, सुनी तरह तुरदा ही नहीं है, क्योंकि एनर्जी सारी दी सारी ओहो गलत

सो प्रकरण आरंभ किया से अकाल पुरख वाहिगुरू ने सानू शरीर दिता है ते इस शरीर का कोई खास मिशन है ना ते सानू शरीर दे मुतलक ही पता है कि एक ही वस्तु है ते ना ही सानू मिशन दे मुतलक पता है कि मिशन की है। तो उस दे वास्ते दास ने चुनिया सी कि आओ पहला गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे विचों असी शरीर दे मुतलक इन्फॉर्मेशन जो सानू दित्ती गई है ओ सरवण करिए उसनू हासिल करिए ओ सुनिए कि ए वस्तु की है शरीर वस्तु की है। तो दास ने आख्या सी कि उस दे लई महाराज जी चों 13 नुक्ते 13 पॉइंट्स जो हन ओ मिलदे हन जिथे सानू ए दस्या जांदा है कि शरीर की है। तो जो मैं कह चुका मैं एक दफा फिर उन्होंने रिपीट करता हां। नंबर एक, शरीर दुर्लभ वस्तु है, दुर्लभ जड़ी ना असी बना सकते हां ना असी खरीद सकते हां, यह सिर्फ अकाल पुरख की कृपा दे नाल प्राप्त हुंदी है, इस उते किसी का जोर नहीं है, यह दुर्लभ चीज है। दुर्लभ चीज वो हुंदी जिसकी कोई कीमत ही ना पा सके, दुर्लभ वस्तु है साढ़े सबना दे पास। और दुर्लभ वस्तु हुंदिया होया असी अपने आप नू बड़े सैड, बड़े डिप्रेस्ड, बड़े मायूस, जिदा साढ़े पास कुछ भी नहीं है, इस तरह फील करते रहने। हालांकि साढ़े पास एक दुर्लभ वस्तु है जिड़ा कि 84 लाख जून नू भी चांस उस नहीं, नहीं मिलता जिसका वो साढ़े पास है, उसकी असी वैल्यू नहीं करते, सानू उसकी कदर कीमत का ही नहीं पता। पहली गल बाबा जी समझाते हैं कि शरीर दुर्लभ है, तुसी महान अमीर हो क्योंकि इस तो वध के जो कीमती शह होर कोई नहीं है। दूसरा नुक्ता अर्ज किया सी कि ए रब दी कामणी है, रब दी औरत है, रब दी पत्नी है। काया कामण अत सवाल्यो फिर वसे जिस नाले, फिर सच्चे ते सदा सुहागण गुरु का शब्द संभाले। ए सच्चे पिर दे अंदर होण दे नाल ए सुहागण है, पर इस सुहागण नूं जे पिर तों वाहिगुरु तों दूर लै जाओगे, दुनिया दे विच जाके इस नूं गवा दोगे, स्वाद बाद ईरख मद माया दे विच इस नूं डोब दोगे, ये कुमला जाएगी। क्योंकि पिर तों दूर लै जाओ पत्नी नूं तो वह कुमला जाती है, उदास हो जाती है, वह मर जाएगी। इस शरीर नूं वाहिगुरु की संगत च रखो, साधु संगत च रखो, गुरबाणी की संगत दे विच रखो, तो यह शरीर जो है वह हरिया भरिया होएगा, यह मौलेगा, यह खिलेगा। इसनू अकाल पुरख वाहिगुरु तो दूर लै जाओ, वो इसकी जिंद जान है, यह मायूस हो जाएगा, मायूस हो जाएगा। यह रब की कामणी है, इसनू रब दे नेड़े रखो, इसनू उस तो विछोड़ो ना। तीसरा नुक्ता रखा सी, यह मंदिर है, काया महल मंदिर घर हर का, जिसमें राखी जोत अपार। जिस तरह किसी मंदिर दे नाल ट्रीट करते हो उसे तरह इस दे नाल ट्रीट करो। मंदिर अंदर गाली नहीं दिती जा सकती, इस मंदिर दे नाल भी गाली नहीं दिती जा सकती। जो वस्तुआं इस मंदिर च नहीं लिया जा सकदियां वह वस्तुआं इस मंदिर च भी नहीं पाईया जा सकदियां। इस मंदिर का सत्र तिरस्कार नहीं किया जा सकता, निरादरी नहीं की जा सकती, इस मंदिर नू भी अब्यूज नहीं किया जा सकता, इस दे लई भी डिसरिस्पैक्टफुल नहीं होया जा सकता। अगला नुक्ता सी, जो सारे ब्रह्मंड दे विच है, सारे यूनिवर्स दे विच है, जो कुदरत दी कला अकल कला भरपूर रहे, सारा जगत सारी रचना वाहिगुरु दी अकल इंटेलिजेंस एंड कला आर्ट, इंटेलिजेंस एंड आर्ट दे नाल सारी जितनी भी रचना है भरी पई है, कहिंदे ओ सारी दी सारी इंटेलिजेंस एंड आर्ट तुहाडे इस शरीर दे विच है, जो खोजे सो पावे, जो उसनू खोजेगा सो पा लेगा। अगला नुक्ता सी कि एक कोड़ी है, शरीर कोड़ी है और तुसी इस दे सवार हो, पर हुण चक्कर उल्टा हो चुका है, जो कोड़ी है वह सवार दे उत्ते सवार होई पई है, वह सवार दा आखा नहीं मनती है, कहिंदे इस दे उत्ते सवार होवो, भाव इस दे उत्ते मास्टरी अचीव करो, इस दे स्लेव ना बनो। जदों सानूं एडिक्शन्स हो जांदियां हन उदों असीं बॉडी दे स्लेव हो जांदे हां, कहिंदे इस दे स्लेव ना होवो। अगला नुक्ता जो कल छेवां आख्या सी कि यह श्रेष्ठ है, सब तो उत्तम है, बाकी सारिया जूनिया तो कहिंदे पानी भरवाया जा सकता है, यह सब तो ज्यादा उत्तम है।
ਅੱਜ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਨੁਕਤਾ, ਸੱਤਵਾਂ ਨੁਕਤਾ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਇਹ ਸਰੋਵਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਸਰੀਰ ਸਰੋਵਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੋਵਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਰੋਵਰਾਂ ਚ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੀਦਾ। ਪਰ ਕਿਤਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਸੱਚ ਬੋਲਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਰੀਰ ਵੀ ਸਰੋਵਰ ਹੈ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਰੋਵਰ ਆਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਸਰੋਵਰ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਮੈਲ ਧੁੱਬਣੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਕੀ ਹੈ? ਸਰੋਵਰ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਕੀ ਹੈ? ਸਰੋਵਰ ਹੈ। ਆਓ ਹੁਣ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਸੁਣਾਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬਾਣੀ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰੋਵਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ

सत्संग मिले सो तरिया मेरे माधव जी, सत्संग मिले सो तरिया गंग बनारस हिंदुआ मुसलमाना मक्का काबा कर कर बाबा गाविए बज्जल ताल मृदंगर बाबा भगत उछल हुए आया पत उदाहरण अज अजाबा चार वर्ण एक वर्ण होए चार वर्ण

संगत कैसी जानी है। केड़ी संगत, कैसी संगत, केहो जी संगत। सत्संगत कैसी जानी है जिथे एको नाम विखानी है। ओ संगत जिथे एको नाम दी आराधना हो रही, सारे एक नाम दे नाल जुड़े ने, ओ साध संगत। साध संगत मिल होए तराबा, ते संगत करन दे नाल वस्तु केड़ी मिलदी। बिसर गई सब तात पराई, इंसान कितनी भी कोशिश करे तात पराई नहीं छड़ सकता। तात पराई दा पाव है जलन, ईरखा, किसे नू वेख के जलना, तात पराई नहीं छड़दा। पर साहब आखदे ने जीव जो संगत विच आ जांदा ना सब कुछ छड़ जांदा। बिसर गई सब तात पराई, जब ते साध संगत मोहे पाई। कितना संगत विच आउण दा लाभ है, जदों संगत विच आउंदा तात पराई भुल जांदी। इत्थे ही बस नहीं, ना को बैरी नहीं बिगाना, वैरी भी सज्जन नजर आउन लग पैंदा, दुश्मन भी मित्र लग पैंदा, क्योंकि संगत विच आ गए। ना को बैरी नहीं बिगाना, सगल संग हमको बनाई। ये प्राप्त किवें होया, जो प्रभु की लो